हे रविदास इस आस से बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे फिर दुनिया दे राग रंगा वाल धन दौलत वाल

सब कुछ है, जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं, सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे। भगत कबीर साहब बारे कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असीं अपने मनां विच देखीए असीं किन्ना कि एक दूसरे का कहना मनदे। पति कहिंदा है ते घरवाली जी करके अगों बोलदी सत वचन कहिंदी, जां घरवाली कुछ कहिंदी है ते अगों पति उहदी गल दा

पवित्र दास और उन्होंने कहा एक सवार विचार है पर माता पिता और दुखी हो गए अगे ते पुत्र दानी सी अगो नू भी दानी निकली अगो सतनाम सिरवाए एक दिन माता पिता ने कहा रविदास तेनू पाले और तेरा विआह कर दिता सोचे असी तू कमाई करके सानू खवाएगा पर तू ते दानी असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते इस तरह कर जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा साडे वालों कमाई कर साडे वालों दान करी तू माता पिता ने वखरे आकार दिता शाही रस्ते ते अपनी चुगली पा ली चौपड़ी पा ली पर अजमान ढा दुखी होया मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा ते कि दुनिया में जो

से दे गया था, मैं ठीक जे नहीं दीते था भी थी। हालत ही हो गई। कई कई दिन भगत जी भूखे भी रहे पर भक्ति नहीं छड़ी। इना दिना गंगा ते बीज नक्षत्र का मेला लग्या करदा सी। एक दिन घरवाली ने कहा, भगत रविदास नूं भगत जी हजारा लोग गंगा इशनान करन जांदे ने, मेरा भी चित करदा है असी भी गंगा इशनान करन चली। भगत रविदास कहन लगे, बलिए लोके सब तो वड्डा तीर्थ

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। आप माता जी में मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख होगी आप। आजकल के लोग दोहरी जिंदगी जीते, उत्तों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उत्तों दिखावा ही ना के देखने वाला ये कवे कि एदे वर्गा कोई गुरमुख है ही, एदे वर्गा दानी कोई, एदे वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों अंदरों लालसा ऐसी कि जे वास चले ते सारी दुनिया लुट के खा जा। इथों तक देखे है कि लोग धर्म के नाते भी ठगियां कर दी, थोड़ा जिहा दान पुन कर दिता लोगों नूं दिखाण वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सांभ लिया। वड्डियां वड्डियां उगराहियां भी होंदियां, थोड़ा जिहा लोग लगांदे ने धर्म के नां ते बाकी आप सांभ लैंदे। धार्मिक स्थानां दा भी हाल ते धार्मिक

भगत जी ने मुंह परले पासे कीता ते ओ महात्मा बैठे बैठे अलोक हो गए। भगत जी कहंदे ने उधर ते कुछ भी नहीं, जब सामने देखिया ते ओ महात्मा अलोक हो चुके। हुण मन वैराग नाल भरिया, ओए मना ओ आप तेरी चुगी विच आया पर तू पहचान।

जिस दिन महात्मा गए उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते अपना आसन झाड़ते ने पांच सोने दिया मोहरा निकलती उन्हां मोहरा नूं ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देंदे जद मोहरा दा ढेर लग गया सुत्या पिया पाखे आई रविदास ए ठीकरियां नहीं मिट्टी नहीं ए सोने दिया मोहरा ने मैं अपनी खुशी नाल तैनू दे रही इहदे विच मेरी खुशी है सवेरे एक सेठ आवेगा तेरे सोहने मंदिर मकान बनाने वास्ते इनकार ना करे एकदम भगत जी उठ के बैठ गए घरवाली नूं उठाया ते सारी गल दसी घरवाली ने कहा भगत जी जे परमात्मा की इच्छा है फिर सानू इनकार नहीं करना चाहिए दिन चढ़िया एक सेठ आ पहुंचे मोहरा दियां थैलियां भरिया मथा टेक के कहन लगा भगत जी मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी मैं सुखना सुखी जे मेरे घर पुत्र होवेगा ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा उस परमात्मा ने मैनु पुत्र बख्शिया उस परमात्मा ने मैनु पुत्र बख्शिया है ते मैनु हुण आके आ दियो मैं सेवा कर सोहणे मंदिर मकान बन गए भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई पर सा संग इह समा किहड़ा सी एक भी कौड़ा सच ओ समा सी जद कोई नेमी जात दा मंदिर नहीं सी जा सकता कोई पूजा नहीं सी कर सकता उस वेले की कथा अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नीवी जात स्टूल कास्ट नहीं जा सकते हुण भगत की सुबह चार सवेरे फैल रही है और यह सुबह चितौड़ का जिहड़ा राणा है उहदी राणी ने भी सुनी इंडिया दे विच चितौड़ एक बड़ा ही मन्या पर मन्या शहर है इत्थे दे राजपूत राजे बड़े मशहूर होए ने चितौड़ दे चितौड़ दा राजा जिन्हां नूं उत्थे दे लोग राणा कह के बुलांदे राणी दी राणी चाला बाई है यह बड़ी रब की प्यारी सी इसने भी भगत की शोभा वड्याई सुनी ते मन विच सोचिया भगत रविदास के दर्शन कर पर असी हां राजपूत ऊंची जात दे राणे ने मैनू जान नहीं देना तीर्थ यात्रा का बहाना करके ए राणी चितौड़ तो चली और सीधी बनारस पहुंची और सात संगत किसे पासे नहीं गई सीधी भगत रविदास दे डेरे जा पहुंची अगे संगता बैठिया ने भगत रविदास हाथ विच खड़ताला ने

समय ना ने के शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चाला भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहते ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके पुंडा पंडता नु कहा जिनी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जेड़े पहला निंदया करते सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही कोई नहीं आखो सतनाम सिंह है माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने दौड़ बुलाए कई दिन सत्संग होता रहा और अज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा ते फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल विच बैठे

कि मैं बड़ा ऊंचा हूं। मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां के नाल पर एक गल।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

एक जन तेउ मुक्त भय चरण बदक। हे प्रभु तेरे पैरां विच तीर मारन वाला वो शिकारी भी तर गया, गनका भी तर गई, कुबजा मालन भी तर गई, मेरे ते भी नजरे अनायत कर। चरण बदक जन तेउ मुक्त भय हों बल बल जिन राम कहे दासी सुत जन।

भगती कर, उनू याद कर। परमेश्वर यारा दिए जिंदू होइए भगत पुनीता, बाहर चलिया करन तप। पांच साल दा छोटा जिहा बच्चा कहंदे ने, सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते ताइया ताइया तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी, तेरी गोत केड़ी है। ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पोगीसर भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बारिया, तेरा अंत न पारा बारिया।

0: Purbina Parapave, Danida Dadirida, Purbina Parapave, Hingala Himalida, Gurgari Deji Gunigavi, Tero Name,
1: Gurgari Deji Gunigavi, Tero Name,
0: Jogi Jog Sade, Pound Sadana Katekabad, Arabic Arbi, Arade Tero Name, Farsi Farangi, Mane. कलदारी कुरा सीधाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम गए मरहट्टा मंगल तेरी मन सुन तपस्या कर मरहट्टा मंगल तेरी मन सुन तपस्या कर।

फरंगी के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया, रोके रुगेले मग देश के बंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं, गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे।

ने पूर्ण प्रताप पाए सर्वधन ताम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बहरिया तेरा अंत

जयंती 24 बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचाव सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुमते पाऊं

जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवगुन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछान चीटी थे कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

तब दे अपारम जब आकर कथ हो कबू तुम मैं मिल दे तरसबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत दरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूड कछ पे

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण भिन्न भिन्न तुहते तुमरा लखा न जाए पसारा कहबत सीधा प्रथम संसारा एक के रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं तूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुछ खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंप आजगा स्वरूप स्वयंप अमृत छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोखत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट ने आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाह छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल फास्ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दोखते रहा।

नानक दे घर कोई भी जावे किसे भी जात दा किसे भी मजहब दा ओ उन्हों गल ना लगांदी एक आई सिख गुरु साहब दे दर्शन करन वास्ते तुर पिया इहदे कोल तीन पैसे सन ओ पल्ले बन लए जिथे गुरु साहबां दे बादशाह जहांगीर दे तंबू लगे सन

तीन पैसे पल्यों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे, कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है।

हाथ जोड़ के कहने लगा, सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण स्वार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया, ते नाले किया मैं ते बादशाह हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा, हां जे तू कवे हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने किया ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है, मेरे कोलों हाथी घोड़े मांग हीरे जवाहरात मांग जो मैं दे सकना। ओ काई कहन लगा, मैनू माया नहीं चाहिदी, मैनू ते परमेश्वर दी मेर दी निगाह चाहिदी। ते वापस मुड़ पे तंबू दे बार आया, अचानक ख्याल आया, एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया, जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी, वो तीन पैसे चुप के ते फिर

पैर पाया मन खिंचया गया, क्यों महापुरुषां नूं मिलिए ता मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है। किस दुनियावी आदमी नूं मिलिए ते मन विच प्यार नहीं आंदा। इस सिख ने गुरु साहिबां दे दर्शन कीते, कहण दी लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दियो। साहिबां दे चरणां ते ओह तीन पैसे रख के मत्था टेकिया, बिना मंगया सब कुछ मिल गया। हुण फैसला सुनन वालिया ने करना है कि पग किहदी उच्ची। एक पासे बादशाह है, ओहदे सिर ते भी पग है, एक पासे गुरु है, ओहदे सिर ते भी पग है, पर पगां विच फर्क ए, एक पासे जुलम।

ए बग गुरु तू सवा एक अकाल पुरख तू सवा किसे होर अगे नहीं झुकनी चाहिए। जेड़ा सिर किसे होर दे अगे झुक जावे दुनिया अगे झुक जावे ओ सिर फिर परमेश्वर दे अगे झुकाण दे लायक नहीं रहिंदा। सिर झुकाना है परमेश्वर अगे झुकाओ जिस दुनिया बनाई है क्यों कि ओ उच्चा है जिहड़ा ओहदे नाल लगदा है

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने।

मौत को डर नहीं लगता, रोना इस करके आ गया कि दुनिया विच मैं पहला आया सी, तू मेरे बाद। मेरा हक बनदा पहला मैं शहीद होवां।

मैं भी तुहाडे नाल प्यार करना, पर मैं उस बादशाह दे अगे सिर नहीं चुकाना। हार मान लवां, अपनी पग चुका दे एक बादशाह दे अगे, सुलाह कर लवां ये कह के कि मैं हार गया, पर मैं हारिया नहीं। मेरे पुत्र शहीद हो गए, कोई सिख मेरे कोल नहीं, घोड़ा भी मेरे कोल नहीं, सवारी

हाल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची आपने की तक।

कि मिर्ग आया है पानी पीण लई। ज्यों पानी पीण लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है, दम रुक गया। ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज, ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओह भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहिंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहिंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब है काल ही जपाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी, क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उत्थे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उत्थे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहिंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वह भी उत्थे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन। ये छे दी गिनती कीती है बाणी दे विच, मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के सप नूं मार दिता, उदी जहर चढ़न करके शिकारी भी मारिया गया। कुछ चेर मगरों जदों फंदक दी औरत रोटी लैके आई, उसने अपना पति मरिया होया वेख के आख्या हुण मेरे जीवन नूं त्रिग कर। इस करके वह भी गर्भ वाली सी, भाव इस दे पेट विच भी बच्चा सी, औरत दे मरन नाल वह बच्चा भी नाल मर गया। इस वजह करके काल दी गति अगाध कथन कीती है, इस काल ने तो वड्डियां वड्डियां नूं नहीं छड्डिया, कई मेट डारे उशारे बनाए, उपारे गड़े
ਫਿਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

सो अंत सो वह अनंत कटकट व्याप रिहा भगवंत तन महे आकाश प्यार सर्वलोक पू

राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे कत दीवाजा हक हक अगा गुर गोविंद सिंह शाहे शाहन शाह गुर गोविंद सिंह हक हक

जे थले बैठे मत कोई जानवर आ जाए। इस करके वृक्ष ते चढ़ बैठ देखा, एक मुड़ सी दो टैन सन, एक ते भगवान कृष्ण ते दूसरे ते सुदामा। साध संगत बोलो श्री वाहे, क्योंकि नाता है भगती दा। एक बार भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन नु आख्या सी, हे अर्जुन, मैं भगतन का भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। हे अर्जुन, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं भगतन का भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, भगतन काज लाज हो छोड़ो, पैर प्यादे तामो, जहां जहां पीड़ पड़े भगतन को, मैं तहां तहां जाए छुड़ा। अखे जो जो मेरो भगत विरोधी, सो वैरी है मेरो देख विचार, भगती का नाता मैं रत हांकता तेरो। आख्या अर्जुन, तेरा मेरा की संबंध है अब भगती दा। तू रथ ते बैठा होए ते मैं तेरा रथवान, रथ नू चला रे। ए किस दे सदके, ए प्यार दे सदके भाई, जिवें उन्हां नू तारे आ, जिवें उन्हां दी

ये कंटक जाल परे पग तो है। आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए, इन्हें दिन किथे रे। रुक्मणी राधिका सोने चांदी दिया गागरा भर के ले आई।

जे औकौड़े रीठे ते नजर पैगी गुरु नानक सचे पातशाह दी तां मिठाओगे। साध संग बोलो श्री वाह। जिमें आखिया कौडा सी जो कौडियां दा लखां दा बनाए दिता, चोर मन होर होए रोए के पुकारिया, सजन दे नाम हेठां ठगदा जहान सारा, ठगिया गया आप हथ कन्ना नू लगा लिया, होई शर्म सारी सी जो वली कंधारी ताई, एक हथ नाल जां पहाड़ी नू करारिया। आख्या केड़े केड़े दसा, केड़े केड़े दसा जेड़े किरती गरीब तारे, ओवे किवे तारो जिमें लालो ताई तारे, जिमें उन्हां नू तारिया, पापियां नू तारिया, पततां नू तारिया, पामरां नू तारिया, दुष्टां नू तारिया। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, आओ गुरु की साजी नवाजी साध संगत बेनती करो, गरीब नवाज जिवें उन्हां नू तारिया, अज साडी भी बांह फड़ लो, साडी भी रखिया करो। के साखी महाराज जी करदे सन, आओ भाई असी भी अरदास करी, प्यार नाल कीती अरदास दरगाह विच परवान हुंदी है।

बस भयभीत हो गया, घर चला गया, मौत का डर खाई जा रहा, दिन रात चिंता लग गई। एक दिन गया, खाना पानी छड़ दिता, भी मेरा यह शरीर किस काम आया, जे हुणे मौत होगी मैं ते अपनी तमन्ना पूरी ना कर सकिया, मेरिया इच्छावां मन दियां विचे रह गई। एक दिन गुजरिया, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, गुजरते चले गए, चिंतातर हो गया, चेहरे दा रंग बदल गया, शरीर खीन हुंदा जा रहा, आत्मा कमजोर पै गई, जमीर जड़ी है मन नहीं रही किसी चीज नू, ना गुरु के दर जा रहा है, ना किसी धी पुत्र नू प्यार कर रहा, ना सज्जन मित्र नू किसी नू बुला रहा है, अलग जिहा बह गया, इकलवांझे होके बह गया ना, नवेकला सोची जा रहा है। लिखे इतिहास अंदर भी इतना बली जड़ा है, सत दिन इतना कमजोर हो गया, सत दिन दे अंदर इतना कमजोर हो गया, छे दिन बतीते, सतवां दिन होया ते अखां च वांसू जान लगे भी अज मौत हो जानी, मौत नूं डीकन लगा, सवेर तों लै के शाम तक तरकालां पै गईयां, शाम नूं मौत ना होई, अठ वज गए, नौ वज गए, दस वज गए, मौत ना होई, पर है पै भीत भी शायद अज सत दी रात नूं मौत हो जाएगी, क्योंकि गुरु ते विश्वास है, गुरु ने वाक जे कह जिते गुरु पूरा है ते जरूर सत दिन अंदर मौत होएगी। डर गया, व्याकल हो गया, सतवी रात भी लंघ गई ते अठवां दिन जदों चढ़िया ना, थोड़ी जी खुशी दी किरण जागी भी शायद की गल है, कारण की है, कहंदे भी सोटी हाथ विच फड़ के गुरु महाराज दी हजूरी च गया, सहारा लैके सोटी दा, सत दिन च इतना कमजोर हो गया भाई सोटी फड़नी पै गई, सोटी दा सहारा लैके सहब सचे पातशाह जी महाराज दी शरण च पहुंचया। महाराज कहन लगे, पैंदे खां सुना तू बच गया, हां महाराज तुसीं ते सत दिन च कहा सी मौत हो जानी है, ते सत दिन ते बतीत हो गए ने सचे पातशाह, अठवां दिन चढ़ गया, मौत होई नहीं, पर मौत दे डर ने मैनू भयभीत इतना कर दिता है। महाराज गरीब नवाज सचे पातशाह कहन लगे भी सत दिन दे अंदर तैनू को काम फुरिया, क्रोध फुरिया, किसी ना लड़न वास्ते तेरा चित कीता ना महाराज, हंकार आया ना महाराज, मोह उपजिया ना महाराज, कोई लोभ जागया भी पैसा इकट्ठा कर ला ना महाराज, फिर सत दिन दे अंदर अंदर तैनू कुछ ना फुरिया, ना तैनू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा द्वैत सारी भुल गई, अंदरों निकल गई ना। हा महाराज की याद रहा, एक तुहाडा स्वरूप ही याद रहिंदा सी भी, जिन्हां ने वाक कहा सी भाई सत दिन च मौत हो जानी है, वह वार वार चेहरा तुहाडा मेरे सामने रहिंदा सी, महाराज शायद इस करके बच गया। गरीब नवाज हसे, कहन लगे नहीं पैंदे खां, तू गल नहीं समझ सकिया, गल बुझारत सी, ए असी पाई सी बुझारत भी तेरी सत दिन दे अंदर अंदर मौत होनी, ते होनी भी तेरी सत दिन दे अंदर अंदर मौत है, अजे भी तेनू कह रहे भी सत दिन दे अंदर अंदर मौत होनी। महाराज ओ केड़े सत दिन ने, ते गरीब नवाज कहन लगे भी सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनिचर ते ऐत, ये सत ही दिन ने, अठवां दिन ही कोई नहीं, इन्हें सत्तां दिनां दे अंदर ही तेरी मौत होएगी ना, सौ मंगल बुध वीर शुक्र शनिचर ते आयत, सत दिन दे अंदर ही तेरी मौत होनी, चरणा ते डिग पिया। महाराज जदों मौत चेते होवे ना रब नूं, इंसान नूं जदों मौत चेते होवे उदों रब चेते हुंदा है, ते जदों मौत भुल जावे इस नूं संसार याद आ जांदा है, संसार दे राहां दे विच फिर भटक जांदा है, ते संसार दे इतने राह ने, किसी राह च वड़ जाए निकलना इस वास्ते असंभव है, क्योंकि गलियां बड़ियां छोटियां ने, भीड़ियां ने, संसार दियां गलियां जड़ियां ना, आसा मनसा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दियां गलियां बड़ियां भीड़ियां, ते है भी भुलेकड़ियां जिहियां ने, भी एक बारी इंसान वड़ जाए वापस उस गली चो निकलना असंभव है। ते गरीब नवाज जदों आप जी ने यह बात कह दिती ना, ते मैं गली च वड़िया ही नहीं किसी च, सतगुरु कहने लगे जे ए इंसान नूं याद आ जाए ना भाई रब है मौत है, ते फिर इंसान भुल नहीं कर सकता, गुनाह नहीं कर सकता। एहो ही ते याद आया सी भाई दयाले नूं, भाई मती दास नूं, भाई सती दास नूं, साहिब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सनमुख ने, पूरा गुरु सनमुख है, सामने देग उबल रही है,
ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਗਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਰਮ ਜਲ ਬੜੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੂਸ ਕਰ ਲੈ। ਐ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਚੰਨ, ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗ ਗੁਬਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਰਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦਮਾ ਅਹਿਨਤ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਾਲੋ। ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਬਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਹੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਡੁੱਬਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਕ, ਬਈ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਸ ਸੰਜਮ ਕੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਭੇਸ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache paande saaj nivaje, antar jot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his life within them. Jaisa likht likhya tur karta hai, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. मन तन थाप किया सब अपना, ए हो आवन जाना। He believes the mind and body are all his own. That's the cause of his coming and going. जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लपटाना। He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपार। One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. भगत करी हर के गुण गामा, नानक दास तुम्हारा। Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।